हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। स्वागत आप सभी श्रोताओं का।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर छह बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के सात स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं

को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच एसआईआर के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की आईआईपी वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:05 हुए हैं। समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। कार्यक्रम में सबसे पहले समस्वर में मातृवंदना।

समूह स्वर में मातृवंदना आप सुन रहे थे, रचना थी उद्धव कुमार की। आइए सुनते हैं ये गणेश वंदना, वाणी जयराम और साथियों के स्वर, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए आप सुनवाते हैं आपको विजय शंकर और साथियों के स्वर में डॉक्टर अजय प्रसून की ये रचना।

0: भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। रचना थी संत मीराबाई की। इसके साथ ही कार्यक्रम अर्चना संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सागर है। 6:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोता, आप सुबह कुछ ही पल में यानी 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। मूल विश्री गीत आप सुनेंगे 6:40 से। 7 होगा हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। कृषि संकेत कार्यक्रम 7:05 से आप सुन सकेंगे। अपनी फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे 7:20 पर। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और संगीत आप सुनेंगे 7:45 पर। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा 8:15 से। और 8:30 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। हमारा आज का विषय होगा उद्यमशीलता, सपनों से हकीकत का सफर। मेहमान होंगे हमारे आज के करण बहादुर श्रीवास्तव और उनसे बातचीत करेंगे दीपक निषाद। समय पर सुन लीजिए 8:30 पर। कार्यक्रम होगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर।
1: गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।

आकाशवाणी सागर से कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं। सुबह 8:45 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा और 9 से हम रिले करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 10:05 पर होगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी और आपकी पसंद कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 10:30 से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा 11 से और 11:30 से हम रिले करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दोपहर 2 फिल्म संगीत होगा और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हम रिले करेंगे। शाम 5:30 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा और 6:30 से सदाबहार गीत हमारे स्टूडियो से। आज शाम की सभा में लोकरंग कार्यक्रम का प्रसारण इस प्रकार होगा 6:45 पर और 7:20 पर और किसान वाणी आप सुनेंगे 7:30 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे। रात्रि 8 होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत और 8:20 पर आप सुनेंगे एक स्वास्थ्य वार्ता जिसका विषय हुआ अपने दिल का रखें ध्यान। इस विषय पर बातचीत करेंगे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश टीकादार, उनसे बातचीत करेंगे जय शेखर। तो ये स्वास्थ्य वार्ता सुनना भूलें रात्रि 8:20 पर। 9 मन चाय गीत कार्यक्रम और 9:30 से रिले किए जाएंगे वह भारतीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें मुंबई केंद्र से रिले करते हैं। 10 से आप सुनेंगे एशियन गेम्स 2026 हाइलाइट्स, दिल्ली केंद्र से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। और अब समाचारों का विवरण।

संस्कृत में समाचार 6:55 पर दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं सुबह और शाम 7:10 पर, दोपहर 2:10 पर। ये अनुप्रसारित किए जाते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री राम चरित्रमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर वाणिज्य राम और उत्तरा केलकर का

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगी। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक गोस्वर थे वाणी चरण और उत्तरा केलकर के। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। छिबचकर 40 मिनट हुए हैं, सुनते हैं कार्यक्रम भूलो बिसरे गीत। सबसे पहले सुनते हैं मसरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना लता मंगेशकर के स्वर में। ऊंचे लोग फिल्म से ये गीत हमें लिया है और इसे स्वरबद्ध किया चित्रगुप्त ने।

0: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
1: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
0: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
1: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
0: संपर्क करें 8720096977
1: 8720096777।
2: गीत कार्यक्रम आपको सुना रहे हैं आकाशवाणी सागर से। इशारा फिल्म से ये अगला गीत हमने लिया मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार है नसरू सुल्तानपुरी और इस गीत को संगीत से संवारा कलीम जी आनंद जी ने।

अगले गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुन्ना डे के स्वर में, शब्दश्री शैलेंद्र की, और इस गीत को सुनने से सवारे शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम रात और दिन।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने

आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए।

0: आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: बिस्तरी गीत कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 6:55 होने का अगला प्रसारण दिल्ली के अंदर से कुछ ही पलों में। आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। न्यूयॉर्क नगरे आयोजितायाः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय उपवेशने भारतेन रंगभेदस्य, प्रजातीय विभेदस्य, परदेशी द्वेषस्य तथा तत्सम्बद्धानाम् असहिष्णुतानाम् उन्मूलनार्थं स्वकीया असंदिग्धा प्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। DDPA इति दुर्बन घोषणा तथा कार्ययोजनायाः अंगीकरणस्य 25वें वार्षिकस्य स्मरणावसरे भारतस्य आधिकारिकं वक्तव्यं वितरता विदेश कार्यमंत्रालयस्य सचिवेन CB जॉर्ज इत्यनेन जागतिक समतायाः मानव प्रतिष्ठायाः च संवर्धनार्थं भारतस्य पक्षः प्रकटीकृतः। विदेशकार्यमन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् सचिवेन सर्वेषां कृते समानतायाः गौरवस्य च संरक्षणार्थं अमोघ संकल्पः पुनः संप्रख्यापितः। ONGC इत्यायोगस्य अन्वेषणनिदेशकः ओम प्रकाश सिंहा संप्राह यत् E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इंधनम वैदेशिक तैल आयातम अधिक मात्रायां घटयित्वा देशस्य आत्मनिर्भरतां वर्धयिष्यति। अहमदाबादे भारत ऊर्जा सप्ताह 27 इत्यस्य पूर्वालोकन प्रसंगे भाषमाणः सः अवोचत् यत् E20 इंधनम एकं समाह्वानम् अस्ति, किन्तु आधुनिक प्रविधिना अस्य परिहारो भविष्यति। सः स्पष्टं न्यगादीत् यत् पश्चिमैशिया युद्धस्य कारणात् जगति देशैः वैदेशिक निर्भरता न्यूनीक्रियते। अस्मिन् काले भारतस्य वर्धमानाम् ऊर्जा आवश्यकताम् विचार्य भारत ऊर्जा सप्ताहः एका प्रमुखा पीठिका वर्तते। भारतीय रेल विभागेन पूर्वोत्तर रेल विभागस्य वाराणसी मण्डले 14,600 किलोमीटर परिमित क्षेत्रे कवच 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23,200 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति, येन रेल परिचालनाय उपलब्धं सुरक्षातंत्रं सुदृढं भविष्यति। उपक्रमोयम् अधिक सुरक्षितं विश्वसनीयं च रेल परिचालनं सुनिश्चेतुं तथा संपूर्णे भारतीय रेलजाले स्वदेशीय कवच प्रौद्योगिक्याः विस्ताराय क्रियमाणानां प्रयासानां समर्थनं करिष्यति। भारतेन स्वीय वस्तूनां सेवानां च आहत्य निर्यातस्य परिमाणं 63.8 बिलियन डॉलर परिमित धनात् वर्धयित्वा 1 ट्रिलियन डॉलर परिमितं विधातुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। ह्यः मुंबय्यां संजातस्य भारत संयुक्त अरब अमीरात निवेश संबंधी उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबलस्य 14वें उपवेशनानन्तरं अस्य ऐतिहासिक लक्ष्यस्य घोषणाकारी। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोदीरितं यत् जागतिक संकटेषु सत्यपि प्रवृत्तस्य वित्तीय वर्षस्य प्रथम षट् मासेषु पण्य निर्याते 15% अधिकं वृद्धिः समवापि। जापान देशस्य आईची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक प्राप्ति क्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः। लक्ष्यवेधक
2: क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। भारतेन पदक संख्यायां अष्टौ पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। पुरुषाणां कुंटक्षेप स्पर्धायां भारतस्य द्वे पदके प्राप्ते। यशवीर सिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकं अवाप्तम्। इति वार्ताः।

0: ये आकाशवाणी सागर है, 7 बजे है। सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। पेड़ों ने प्रतीक्षाएं की तो उन्हें पतझड़ के बाद बसंत मिला। हर मौसम ने प्रतीक्षा की तो हर बार मौसम नया और नया हुआ। किसी अपने के लौटने की प्रतीक्षा में मैंने सीखा धैर्य, और इन प्रतीक्षाओं के बीच अनुभव हुआ कि ये प्रतीक्षाएं ही हमें बनाती हैं समृद्ध। श्रोता इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम स्वीकार करें, कार्यक्रम सुबह सुबह में स्वीकार है चंचल का नमस्कार। श्रोता, जीवन में प्रतीक्षा केवल किसी चीज या इंसान के आने का इंतजार मात्र नहीं है, बल्कि यह स्वयं को भीतर से तैयार करने की एक प्रक्रिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रतीक्षा समय को व्यर्थ कर रही है, या कभी कभी हम बेचैन भी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रतीक्षा हमें धैर्य और विश्वास को स्वीकार करना सिखाती है। कभी कभी जब हम प्रतीक्षाएं करके परेशान हो रहे होते हैं और मन कहता है आखिर कब तक ये इंतजार, तो जीवन कहता है जब तुम तैयार हो जाओगे। श्रुतो, जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वो मिट्टी के भीतर चुपचाप अपनी जड़ों को मजबूत करता है। बाहर से देखने पर लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मिट्टी के अंदर बहुत कुछ घट रहा होता है। हमारी प्रतीक्षाएं भी ऐसी ही होती हैं, वे हमें दिखाई नहीं देती पर हमारे व्यक्तित्व को भीतर से विकसित करती रहती हैं। प्रतीक्षा हमें ये समझाती है कि हर चीज अपने सही समय पर ही सुंदर लगती है। जल्दी प्राप्त हुई सफलता शायद हमें खुशी दे दे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद मिली सफलता हमें उसकी कीमत समझाती है। इसीलिए यदि जीवन में आज कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। संभव है कि यह समय हमें उस आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा हो जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। श्रोता, अगर हम इंतजार या प्रतीक्षा को बोझ न मानकर तैयारी का समय न लें तो यही समय हमें बेहतर से मजबूत बना सकता है। जब मंजिल आने में देर हो रही हो तब रास्तों से प्रेम कीजिए, जब परिणाम देर से मिले तब अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, निश्चित ही मंजिल मिलेगी। इसीलिए इंतजार करते हुए निराश मत होइए, अपने आज में जीते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और मन में उम्मीद का दीप जलाए रखिए। जो आपके लिए है वह अपने सही समय पर आपके जीवन में आएगा। तब तक इंतजार को, प्रतीक्षाओं को अपनी कमजोरी नहीं अपनी हिम्मत अपनी शक्ति बनाइए। अंत में श्रोताओं, इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीजिए कार्यक्रम से अनुमति।
1: धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर

0: कहीं नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। ये आकाशवाणी सागर 7:05 हुए हैं। कृषि संकेत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे फसलों में दो प्रकार की इल्लियों का एक साथ नियंत्रण। इस विषय पर जानकारी देंगे अंकित रावत।
3: सभी किसान भाइयों को ये सलाह रहेगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो रकबा ज्यादा है वो सोयाबीन उड़द का ज्यादा रहता है, इनमें इल्लियों से समस्या भी आती है, क्योंकि जो आपका सोयाबीन या उड़द का जो पौधा रहता है जिस हिसाब से उसकी पत्तियां रहती है उनको अच्छा लगता है खाना, बड़े चाव से वो खाते हैं, इन फसलों में इल्लियों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। एक मिलेगी आपको ऐसी इल्ली जो आपकी केवल फसल की पत्ती का रस चूसते रहेगी, उसको हम कहते हैं साधारण भाषाओं में रस चूसक। दूसरा कीट अपना आ गया इल्ली वाली प्रवृत्ति में, जो कीटों का नेचर रहता है, तो इल्ली कुतर के नुकसान पहुंचाती पत्तियों को, और जो रस चूसक कीट रहते हैं वो हमारी फसलों की पत्तियों का रस चूस के उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जहां जहां पे आपके सोयाबीन उड़दा की खेती होती है, लगभग सारे क्षेत्रों में आपका जो पीला रोग एक आम रोग है, हर किसान भाई उस रोग के बारे में भली भांति जानता है, सब अपने खेतों में देखते रहते हैं, लेकिन उसका हमारे किसान भाइयों का कारण नहीं पता रहता, उन्हें का पत्ती पीली पड़ गई वो उसको उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन वो रोग जो हमको दिखता है वो रोग होता है विषाणु से, और जो विषाणु फैलता है वो आपकी मक्खी से, सफेद मक्खी होती है, चूसने वाली प्रवृत्ति वाले वो कीट रहता है। अब होता क्या है, उसने रस चूसा, जब पत्ती से रस चूसा तो जो आपका ग्रसित पौधा था जिसमें पीले रोग का अटैक हुआ है, तो उसने रस के साथ साथ रोग के विषाणु को भी चूस लिए। अब वो उसने रोग के विषाणु को चूसे दूसरे पौधे पे जाके बैठा, पहले तो हमारा एक पौधा ग्रसित था, देखते ही देखते वो मक्खी 10 पौधे पे जाके बैठी, तो धीरे धीरे करते करते देखते ही देखते जब हम पहले दिन देखा तो हमारा एक पौधा था, और वही अगर हम 4 दिन बाद जाके देख रहे हैं तो हमारा आधा खेत पीला, और उसी को हमने जब 1 हफ्ता बाद देखा तो पूरा खेत पीला। तो जब तक हम सोचे इसका नियंत्रण करें तब तक तो हमारा पूरा खेत ही पीला हो जाता है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध रहता है कि आप अपने खेत का नियमित भ्रमण करें, तो घूमने के बाद आपको आपके खेत में क्या समस्या आ रही वो दिखती रहेगी। अब जैसे मान लीजिए अपन ने बात करी ये पीला मोजक रोग होता है वो रस चूसक इल्ली से रहता है, तो इसका नियंत्रण कैसा करें, तो एक तो नियंत्रण हो गया कि जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनको आप उचकाओ, उचका के आप गाड़ दो माटी में ताकि वो वायरस वहीं के वहीं खत्म हो। लेकिन सफेद मक्खी खत्म हुई क्या, सफेद मक्खी तो वहीं की वहीं है, तो हमें सफेद मक्खी का नियंत्रण करना आवश्यक रहता है। जो आपका कीटनाशक रहते हैं, कीटनाशक की प्रवृत्ति होती सिस्टेमिक, सिस्टेमिक का मतलब यह है कि वो पौधे के किसी भी भाग में गिरा और गिरने के बाद पूरे पौधे में फैल गया, और जैसे ही वो आपका इल्ली ने आपके फसल में आई और उसने पत्ती सक करेगी उसके पश्चात वो मर जाएगी। अगर हमारे खेत में रस चूसक आपकी मक्खी का नियंत्रण हो गया तो येलो वेन मोजेक का नियंत्रण हो गया। ये तो बात हो गई रस चूसक इल्ली की, अब इसमें आती है दवाई हम कौन सी डालें। तो रस चूसक इल्ली के लिए हम हमारे किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं, वैसे तो आपके दुकानों में कई दवाइयां उपलब्ध है, जैसे आप रस चूसक बोलोगे वो आपको दुकानदार कई प्रकार की दवाई दे देगा। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो इमिडाक्लोरपेट आती है 17.8 SL, इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाई इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रस चूसक इल्ली की नियंत्रण की बात आ गई। लेकिन अब काटवे वाली इल्ली दिखने लगी आपके खेत में, किसान भाई के पास इतना पैसा नहीं रहता है, क्योंकि समस्या रहती है कैसे तैसे करके वो खेती करता है, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग फील्ड में देखते रहते हैं। तो इल्ली नियंत्रण और मक्खी नियंत्रण दोनों दवाओं को मिला के भी हम स्प्रे कर सकते हैं। जिस भी हम प्रतिष्ठान से लेंगे उससे हम पूछ लेंगे तो वो बता देगा कि कौन सी दवा अगर हम एक रस चूसक मक्खी के लिए मिला रहे हैं और आपका इल्ली के लिए मिला रहे हैं इससे हमारी फसल पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी दवा हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हम थायोमेथॉक्सेम प्लस लैम्डा, ये दो अलग अलग दवाएं हैं, इनको हम मिला सकते हैं, जिनकी 80 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम स्प्रे करें तो। और ऐसी भी और भी बहुत सी दवाई आती है, जब आप दुकानदारों के पास जाओगे ऐसे कई कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जैसे कि बीटा सल्फ्यूरॉन प्लस इमिडाक्लोपेट, इसकी 125 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं, और भी ऐसे कई कॉम्बिनेशन आते हैं। अपने निकटतम दुकानदारों के पास जाएंगे तो आपको और दवाओं के बारे में बता देंगे। तो हम ऐसी दवा डाल सकते हैं जिससे हमारी रस चूसक मक्खी भी नियंत्रित हो गई और हमारा जो पत्ती काटने वाले इल्ली है वो भी नियंत्रित हो गई, जिससे हमारी फसल बची रही। अभी वर्तमान जो समय चल रहा है कीटों का प्रकोप हमारी जो सोयाबीन की फसल हो, चाहे उड़द की फसल हो, चाहे राहर की फसल हो, इनमें अधिक होता है। तो हमारे किसान भाई इस समय कीटों का प्रबंधन करें और अधिक से अधिक उत्पादन करें।
2: फसलों में दो प्रकार की इल्लियों का एक साथ नियंत्रण, इस विषय पर अभी आपको जानकारी दे रहे थे अंकित रावत कृषि संकेत कार्यक्रम में। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से, अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
4: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं विपुल सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी तैयारियों में केंद्र राज्य समन्वय पर दिया जोर। सहारनपुर में सेवा यात्रा का राज्य मंत्री गौतम प्रतपाल ने किया स्वागत और प्रदेश की चार ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, जबकि पिंकी बलहारा ने कुराश के 78 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से रबी सीजन की तैयारियां समय पर पूरी करने और खेती की योजना आंकड़ों के आधार पर बनाने को कहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और पानी की कमी के बीच केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए केंद्र की टीमें जमीनी आकलन करेंगी। श्री चौहान ने कहा,
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाग में टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: प्रदेश के सहारनपुर में वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रही सेवा यात्रा का राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कल स्वागत किया। उन्होंने पचोर से सहारनपुर तक यात्रा में हिस्सा भी लिया। ये यात्रा काशी विश्वनाथ और वडनगर के हाटकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए निकाली जा रही है। इस दौरान उड़नखेड़ी में यात्रियों का सम्मान किया गया और पौधे लगाए गए। राज्य मंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं और लखपति दीदियों से भी बातचीत की। भोपाल में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने डीजीपी कैलाश मकवाना से मुलाकात कर पुलिसिंग के अलग अलग पहलुओं पर मार्गदर्शन लिया। डीजीपी ने तकनीकी के इस्तेमाल, साइबर अपराध, सामुदायिक पुलिसिंग, नक्सल समस्या और कानून व्यवस्था से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने सीरीज 2028 की तैयारियों और नए आपराधिक कानूनों की क्रियान्वयन की भी जानकारी दी। डीजीपी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और जरूरत के समय जनता की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने को कहा। इंदौर में ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन को लेकर नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के सभी 610 गांवों में घर घर से कचरा उठाने और उसकी वैज्ञानिक तरीके से निपटारे पर चर्चा हुई। इसके लिए गांवों को 56 क्लस्टर में बांटकर पीपीपी मॉडल पर काम करने की योजना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इंदौर में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संरक्षण के कामों की भी समीक्षा की गई। भोपाल में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 153 विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें नई शिक्षा नीति और एनसीईआरटी की नई किताबों के मुताबिक पढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जा रही है। गतिविधियों के जरिए बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाने और पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रदेश की चार ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जगह मिली है। इनमें उदयगिरी गुफाएं, बाघ गुफा चित्रकारी, गिनारगढ़ किला और चंबल घाटी के मंदिर समूह शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को अब वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने विरासत के संरक्षण और उसे दुनिया तक पहुंचाने के प्रयासों को और मजबूत करने का आह्वान किया। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए चलाए जा रहे संपर्क अभियान 2026 को अच्छी सफलता मिली है। 14 मई से भोपाल और ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में करीब 6000 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में 266,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। इनमें गलत बिजली बिल, मीटर, वोल्टेज और ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याओं के साथ नाम बदलने और नए कनेक्शन जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के तहत कल आंगनबाड़ी मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के केंद्र के रूप में विकसित करने का संदेश दिया गया। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कार्यकर्ताओं हितग्राही महिलाओं से संवाद किया। प्रदेश में 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य और नेत्र जांच, पोषण जागरूकता, मातृ संवाद और रचनात्मक गतिविधियां हो रही हैं। इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान से सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की वर्चुअल मौजूदगी में हुए समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के संगीत और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को याद किया। प्रदेश में खरीफ फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। अब तक 40,454 किसान पंजीयन करा चुके हैं। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश में 1100 से ज्यादा पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विकास में सीएसआर की भागीदारी बढ़ाने के लिए कल भोपाल में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव होगा। इस सम्मेलन में आंगनबाड़ी, पोषण, स्वास्थ्य, शुरुआती शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का दौर अब थमने वाला है। अगले 4 दिन किसी बड़े मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में तेज धूप का असर ज्यादा रहेगा। बुधवार गुरुवार से प्रदेश में मानसून की विदाई भी शुरू होने वाली है। सबसे पहले उज्जैन और ग्वालियर संभाग से मानसून लौट सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ जिलों में तेज धूप खिलेगी जबकि बाकी हिस्सों में बादल और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। भोपाल में सहकारिता क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार हो गई है जहां आम लोग भी दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच करा सकेंगे। करीब 12 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी इस लैब में 100 से ज्यादा मानकों पर जांच की जाएगी जिसमें मिलावट, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स और हैवी मेटल्स जैसी चीजें शामिल हैं। जल्द ही यहां जांच की सुविधा शुरू होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज विश्व हृदय दिवस है और इस बार संदेश है कि आप दिल की धड़कन से जुड़े किसी भी संकेत को नजरअंदाज न करें। WHO के मुताबिक 2022 में दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों से हुई है। कटनी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम और वीवीपैट के जिला स्तरीय वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण आज शाम 5 बजे किया जाएगा। खंडवा में नवचंडी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय निर्माण की कलाओं का उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान निर्माण की लोक कला, लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं की प्रस्तुतियां दी जा रही है। धार में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए रवि 2026-27 की तैयारियों के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र में उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना जिला खनिज प्रतिष्ठान की कल संपन्न हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में जनप्रतिनिधि सदस्यों से प्राप्त सुझाव पर चर्चा की गई। उप निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आगरमालवा जिले की नलखेड़ा जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 6 और 11 में सदस्य और सुस्मेर नगर परिषद सुस्मेर के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। झाबुआ के गौतम गामन ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर वाहन चालक से स्वयं के व्यवसाय के मालिक बनने तक का सफर तय किया है। मुरैना में निराश्रित गौवंश को लंपे स्किन डिसीज से बचाव के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। तिंदौरी में 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के कान्हा परिक्षेत्र की नकदी घाटी बीट के कक्ष क्रमांक 138 में कल 11 माह की मादा बाघ शावक का शव मिला है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की और डाक स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले ये व्हाट्सएप फरमाइश है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गुण, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और समस्त अब्बासी परिवार। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश हम पूरी करेंगे और सुनवाएंगे गैम्बलर फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: मिले कहे रहे कैसे रहे बिछड़ेंगे
1: फिर भी तन मन
2: देखो देखो देखो।

0: से पहले दिवाली धमाका।
1: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दे नई दिशा, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720009677। मंच आयोजित कार्यक्रम की अगली फरमाइश इन श्रोताओं की। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरिंदर सिंधु, अनिता सिंधु, रोहित रितेश सिंधु, शिखा प्रतीक्षा सिंधु और मैक्स। शाहनगर यवतमाल से राहुल मंगर, सरला मंगर, विशाल, चेतन, रोशनी मंगर, बेबी प्रियांशी। आप सभी श्रोताओं का अनुरोध पूरा करेंगे और सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में मन की आंखें फिल्म से ये गीत।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: कार्यक्रम मंचाय गीत में अगली फरमाइश हमें भेजी इन श्रोताओं ने। लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू तिरुपति और कुंती साहू, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान और उत्कर्ष चौहान। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनाते हैं गुमराह फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज दी महेंद्र कपूर ने।

अगला गीत सुनना चाहा है इन श्रोताओं ने। मलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल और कौशल्या देवांगन, शीतल रेडियो श्रोता संग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता हैं। और ये संदेश भी हमें व्हाट्सएप पर ही मिला। डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। और एक पत्र भी हमें प्राप्त हुआ इस गीत को सुनने के लिए। नेपाल पहले सागर से तिलक राना, मीना राना, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा शिवांशु, यश अवधेश, प्रेम नारायण और रमेश कठोरिया, सुजीत और रमाकांत दुबे का। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं अमीर गरीब फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

आइए श्रोताओं, फरमाइश पूरी करते हैं इन सभी श्रोताओं की। आप हैं मंगी पैठन महाराष्ट्र से, बाबा साहेब कंगनकर, साखरबाई कंगनकर, परमेश्वर रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी कंगनकर और समस्त परिवार। एक और संदेश इसी गीत के लिए दिख रहा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रचन साहू, हेमंत नंदे और धर्मदास बाधवानी का। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं गीत गाता चल फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज दी आरती मुखर्जी ने।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुनें

कार्यक्रम मनचाहे गीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 7:45 हुए हैं। सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले आपको सुनवाएंगे गुलजार की ये रचना जगजीत सिंह के स्वर में।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 742 XT सिर्फ 1,21,000 के डाउन पेमेंट पर, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720099677।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए आपको सुनाते हैं शेख अदम अबू बाला का ये कलाम पंकज उधास के स्वर में

0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित अधिक प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीतिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटान गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चंदा हरदा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उनका रहा है, उससे हम लोग गांव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप तो पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताहों में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विद्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Thank you. आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बजकर 15 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं देवकी नंदन सकवार से ये श्रृंगार गीत।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: अपने पुराने टू व्हील ड्राइव को फोर व्हील ड्राइव से करें अपडेट, खेती को दे नई दिशा। नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720009677।
2: लोक संगीत कार्यक्रम, माफ कीजिए श्रोता, लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से चंद्रभूषण पाठक के स्वर में। अब सुनते हैं ईसुरी लोकगीत।
3: रजऊ बोल लो नौने

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के,
1: और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: दिवाली से पहले दिवाली धमाका,
5: स्वराज 735 FEE रोटावेटर के साथ मात्र 7,21,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
4: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
5: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स, खेमलासा रोड, बीना,
4: माणिक मोटर्स, छोटा करीला, सागर।
5: संपर्क करें 8720096977
4: 8720009677।
6: लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अब आपको सुनवाते हैं लक्ष्मी त्रिपाठी से ये दादरा

सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। हमारे इस कार्यक्रम का आज का विषय है उद्यमशीलता, सपनों से हकीकत का सफर। और आज के मेहमान हैं करण बहादुर श्रीवास्तव, इनसे बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर।

0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप हैं करण बहादुर श्रीवास्तव साहब। कई शख्सियत आपके अंदर समाहित है और कई सारे क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आप युवा उद्यमी हैं, आप स्कूल संचालक हैं, आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं और राष्ट्र निर्माण के कार्य में भी आप बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। तो युवा देश की तकदीर को कैसे बदल सकता है? आज का युवा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं भाग रहा है, बल्कि देश बदलने के इरादे से उद्यमिता की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। और हमारे करण बहादुर श्रीवास्तव साहब जो आज के मेहमान हैं, आपने एंटरप्रेन्योरशिप में काफी काम किया है और अमेरिका के बोस्टन से आपने उद्यमिता में MBA किया हुआ है, तो इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए काफी हस्तक्षेप रखते हैं आप। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए करण जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एक युवा अपने अंदर उद्यमिता के विकास के लिए क्या कर सकता है, आज की मांग क्यों है ये?
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। उद्यमिता, जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल सही है कि हमारा देश का युवा जो है ये अग्रसर है नेशन बिल्डिंग, देश को बनाने के लिए, और इसमें उद्यमिता का एक बहुत बड़ा रोल, एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। उसका कारण ये है कि हमारे देश में अगर हम आज देखें, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे देश में 19 से लेके 29 साल के लगभग युवा आज मौजूद हैं। सिर्फ नौकरियां इन लोगों को रोजगार नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो अगर हम रोजगार का अगर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें तो ये 34 करोड़ युवाओं का क्या? ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिस दिन मेरे सामने आई, उस दिन मेरे को लगा कि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका समाधान निकालना हम युवाओं को ही समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, और इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप है। जो कि हमारी अगर संस्कृति में हम देखें तो हमारा देश जो था वो सेल्फ सस्टेनिंग था, आत्मनिर्भर था, और एक लोकल लेवल पे विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर एक कुछ गांव का एक संग्रहण जो रहता था वो आपस में ही सेल्फ सस्टेनेबल थे, आत्मनिर्भर थे। तो उस कंसेप्ट पे काम करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता इस देश में आज फिर से है, वो ही हमारा सोल्यूशन वापस निकल के आएगा। आपका दूसरा सवाल जो था कि इस देश में उद्यमिता को सीखने या करने के लिए युवा क्या कार्य कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको कोई अपने को बिजनेस टर्मिनोलॉजी के अंदर डाल के कोई फायदा नहीं है, इसको कोई बहुत कठिन रूप से समझने की जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक वैचारिक थॉट, एक विचारधारा है जिसके माध्यम से आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन निकालना, और कितने इनोवेटिव तरीके से आप उस चीज का सोल्यूशन, कितने सिंपलिस्ट तरीके से, कितने साधारण रूप से आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक नया धंधा चालू करना नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप कई लोग अपनी बड़ी बड़ी MNCs जो मल्टीनेशनल्स हैं उसके अंदर भी इंट्राप्रेन्योरशिप उसको कहते हैं वो लोग, जिसमें वो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो उनकी आंतरिक समस्याएं हैं उन आंतरिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता है ही नहीं। बेसिक है कि हमें कोई आइडिया है हमारे पास, उस आइडिया का फिजिबिलिटी हमको चेक करनी है कि आइडिया चल सकता है कि नहीं चल सकता। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट हमारे पास है, उस प्रोडक्ट वो कोई खरीदार उस प्रोडक्ट का है कि नहीं, इतना ढूंढना है, और वो ढूंढने के बाद हमको ये देखना है कि क्या हम उससे कुछ आर्थिक लाभ निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं आता एंटरप्रेन्योरशिप में।
0: कुल मिलाजुला करके आपका संदेश ये है कि युवाओं को उद्यमिता की तरफ बढ़ना चाहिए और नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनना है, जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनना है उनको, और इसके लिए जो तमाम स्किल्स हो सकते हैं वो आसानी से

0: सीखा जा सकता है, फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी कर सकते हैं इसकी, इसके बारे में कुछ बताइए ताकि युवाओं को अगर उनके पास कोई आइडिया है तो उसको कैसे फील्ड पे एग्जीक्यूट करें।
1: देखिए, इसमें सबसे पहले मैं सराहना करना चाहूंगा अपनी सरकार की। सरकार के बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें, और बहुत सारी ऐसे पोर्टल्स हैं जहां पे सरकार हम लोगों को, अब युवा हो चाहे नहीं भी हो, मान लीजिए वरिष्ठ भी हैं और वृद्ध भी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, सभी को बहुत ही सारी सब्सिडीज, बहुत सारी आर्थिक रूप से हेल्प, इंटरनल ऑपरेशनल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। फॉर्मल एजुकेशन की आपने बात करी, तो यस, फॉर्मल एजुकेशन हमेशा आपको हेल्पफुल होती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है एंटरप्रेन्योरशिप को अचीव करने का या एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता करने का, जिसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन उस कोर्स के माध्यम से मिल सकती हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इस देश में, जैसे कि मैं अगर नाम लूँ तो EDII करके एक इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, iHub है, इंक्यूबेशन सेंटर है एक गुजरात का, ऐसे ही हमारे सागर में, जबलपुर में, स्मार्ट सिटीज जितनी हैं उन सब जगहों पे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। उन इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से आपको संपूर्ण रूप से मार्गदर्शन मिल सकता है, कौन सी स्कीमों में आपको जाना है, कौन से कोर्स स्ट्रक्चर्स हैं, आपको आपके आइडिया के रिस्पेक्ट में कौन से कोर्सेज करने चाहिए, क्या कला, क्या स्किल जो है आपको डेवलप करनी चाहिए, वो सारी आपको जानकारी वहां से मिल सकती है।
0: ट्रेनिंग और अनुभव के साथ आगे बढ़ना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है ताकि सफलता जो है सुनिश्चित कर सके, फुल प्रूफ कर सके, क्या कहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल। जी देखिए, ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती है एक्सपोजर, तो दूसरे की गलतियां जो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं वो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको पता चल जाती है। हैंड ऑन ट्रेनिंग के अंदर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप ट्रेन हो रहे हो फिलहाल, आपको वेरियस अलग अलग समस्याएं, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में आपको बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, केस स्टडीज हैं, उन केस स्टडीज के माध्यम से आप बिल्कुल बहुत ज्यादा सीख सकते हो, आपके पास एक्सपोजर है वो काफी सारा आ जाता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो होती है वो काफी बेहतर और आपको काफी और सक्षम बनाने में कारगर है।
0: उद्यमिता या बिजनेस की बात जब की जाती है तो ऐसा माना जाता है, ऐसी एक धारणा भी है, पूर्व धारणा कह लीजिए आप, कि बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटी अवसर ज्यादा होते हैं और छोटे शहर उसके बहुत मुफीद नहीं होते हैं, बहुत काम के लिए फिजिबल नहीं होते हैं। तो ये जो धारणा है कि छोटे शहरों में नहीं हो सकता है, खासकर आप अपने उदाहरण से भी समझाइए कि आपने अमेरिका जैसे देश से उद्यमिता में MBA किया, फिर अब वापस लौट करके आप सागर को ही अपना वर्कप्लेस बना रहे हैं।
1: मैं थोड़ा सा, मेरा ओपिनियन इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे हिसाब से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो तो ऑलरेडी मैच्योर कर गई हैं। एक जो अपॉर्चुनिटी है वो आज की डेट में छोटे शहरों में ही है, टियर 3, टियर 2, टियर 3, टियर 4 भी, अगर कोई टियर है तो टियर 4 के अंदर, स्पेशली इन इंडिया, स्पेशली भारत की अगर हम बात करें तो इसमें जो टियर 3, टियर 4 सिटीज हैं ये मैक्सिमम पॉपुलस सिटीज हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी रहती है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा हैं, लोग पैसे और नौकरी के पीछे भागते भागते बड़ी सिटीज में चले गए। ये बात भी सही है कि अगर आपको फंडिंग चाहिए है, आपको एक्सपोजर उस लेवल का चाहिए है, आप कोई ग्लोबल लेवल पे स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हो तो वो आप सागर या छोटे शहरों में नहीं कर सकते, बट वो उद्यमिता नहीं है। हम जिस उद्यमिता की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस उद्यमिता को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है जैविक उद्यमिता, ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप। ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप बोलती है कि स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोई उद्यमिता या उद्यम चालू करने के लिए आपको 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की आवश्यकता है। आपके पास, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव, आपके पास आज क्या है आप उससे चालू करिए। आपके पास एक खाली दुकान पड़ी है, आप उस दुकान के अंदर क्या कर सकते हैं वहां से सोचिए। आपके पास रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, 10-25 लोगों को आप जानते हैं जो कि अपने कार्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे कुछ मदद ले सकते हैं, आप उधर से चालू करिए। आपके पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है, आप 50,000 रुपए में क्या कर सकते हैं उधर से चालू करिए। तो ये जो एक मानसिकता आज के युवा में है, ये भ्रम है एक्चुअली, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ऑफ स्टार्टअप्स, कि हमको स्टार्टअप करना है तो हमको 10 करोड़ 10 लाख 25 लाख 25 करोड़ रुपए चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगर आपके पास आइडिया है, उस आइडिया पे आप काम करने के लिए आपके पास लगन है, आपके पास एक कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन, किसी समस्या का समाधान आप कर रहे हैं, तो आप छोटा स्टार्ट करके भी काफी कुछ अचीव कर सकते हैं और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी छोटे शहरों में ही है।
0: बहुत बड़ी बात आपने बताई करण जी कि बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता नहीं है, भारी भरकम रकम की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, लगन के साथ आप आगे बढ़िए आप, और छोटे शहरों में भी मौके उपलब्ध हैं। आप लोग स्वावलंबी भारत के ऊपर भी काम कर रहे हैं और आपने शुरुआत में भी कहा कि स्वावलंबी भारत, हम फिर से सेल्फ सफिशियंट इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, तो स्वावलंबी भारत का आपका जो सपना है, विजन है, वो क्या है, कैसे युवाओं को आप मोटिवेट कर रहे हैं, एक साथ संगठित करके आगे काम कर रहे हैं?
1: ये समस्या जब हम लोगों ने एनालाइज करी, इस पे थोड़ा सा हम लोगों ने रिसर्च किया जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, उसको जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो ये समझ में आया कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस देश में रोजगार का सोल्यूशन है क्या, कैसे हम इन 34 करोड़ लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। तो ये समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप ही एक तरीका है। उसी से उत्पन्न हुआ ये स्वावलंबी भारत अभियान जो हम लोगों ने चालू किया। स्वावलंबी भारत अभियान जो है उसके अंतर्गत ये प्लान है कि हर जिले के अंदर एक स्वावलंबन केंद्र और एक जिला प्रशिक्षक हम लोग रखेंगे, ये सब असरकारी है, और ये जिला प्रशिक्षक का जो दायित्व है ये है एज अ फैसिलिटेटर कोऑर्डिनेटर। तो जैसे कि CBSE, MP बोर्ड और बाकी शिक्षा संस्थान जो हैं और जो काउंसिल्स हैं, उन्होंने भी बोला कि हर इंस्टीट्यूट, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल का गठन उनको करना अनिवार्य है। तो इन लोगों को थोड़ी सी मदद देने के लिए, इन लोगों को थोड़ा सा मार्ग दिखाने के लिए और इनका मार्ग सरल करने के लिए इसका कार्य का गठन किया गया, जिसमें कि जो स्वावलंबन केंद्र है हमारा वो एक ऐसा सेंट्रल एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट है जिसके अंदर आपको पूरी गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स की जो जानकारी मिल जाएगी। आपके पास कोई आइडिया है आप वहां पे आके रजिस्टर करा सकते हैं, तो हम लोगों के पोर्टल पे वो चला जाएगा, हम लोगों की वेबसाइट है एक मेरा स्वावलंबी भारत अभियान .co.in, तो उस पर आप करते हैं तो जो रिसोर्सेज हमारे पास पैन इंडिया है, जैसे मान लीजिए ड्रोन के क्षेत्र में आपको कुछ काम करना है, सागर में ड्रोन वाला कोई नहीं है मगर जयपुर में कोई बैठा हुआ है, तो जयपुर से मेंटर जो है वो आपको सागर वाले इंसान को मदद कर सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है। और इसी के साथ अभी फिलहाल 250 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग प्रेजेंट हैं। कोशिश ये है कि अगले 2-3 सालों के अंदर भारत देश के 800 के 800 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोगों का स्वावलंबन केंद्र अगर खुलता है तो हम कहीं ज्यादा लेवल पर अवेयरनेस, अभिभावकों के बीच में भी एक अवेयरनेस रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप भी हमको डालनी पड़ेगी। तो वो सारी एक इकोसिस्टम को कैसे हम लोग केटर कर सकते हैं, कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए वो कार्य चालू है।
0: जी, वृहद स्तर पे कार्य करने की योजना है स्वावलंबी भारत के बैनर तले। हम आखिरी में आपसे यंग इंडिया के बारे में बात करना चाहेंगे, युवा जोश के बारे में बात करना चाहेंगे। आजकल डिजिटल इंडिया और स्मार्टफोन के युग में चीजें बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गई हैं, क्षणिक सुख की तरफ इंसान आगे बढ़ जाता है, जबकि कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो युवा खुले मन से संघर्ष के लंबे रास्ते को तय करे और अपने सफलता की कहानी लिखे, देश की तकदीर भी बदले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्षणिक सुख।
0: जी,
1: इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये क्या है कि स्मॉल डोपामिन डोज की तरह काम करता है ये। इसके अंदर भी जब अपन जाएंगे तो ये काफी इन डेप्थ रिसर्च इसमें हुई है। ये हम लोगों के जो रिसर्च है उसके हिसाब से दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ये सब हुआ है अपने डिजिटल जो फोन मोबाइल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और ये सारे जो एप्स हैं दुनिया भर के। इसको हम देख भी रहे हैं कि कितने सारे देश हैं जिन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया है टिल एज 16, टिल एज 14, बहुत सारे देश गाइडलाइंस जारी हो गए हैं। बट इसके अंदर काफी सारी इश्यूज हैं कि जो युवा है उसको आज की डेट में तुरंत में सुख की अनुभूति करने की आदत पड़ गई है, फोकस जो है वो थोड़ा सा लूज हो गया है। सच बोलने वाले लोग हैं ये, दे डोंट बीट अराउंड बुश, ये इधर उधर की बातें हैं फालतू की नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं, क्लियर हैं एकदम अपने गोल्स के लिए, क्लियर हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग ने ये रियलाइज भी किया है, यंग जनरेशन ऑफ भारत एक हम लोगों का कम्युनिटी है, एक लाइक माइंडेड लोगों की, जिसका कार्य देश में युवाओं के बीच में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको हटाना ही है। एक छोटे से अगर मैं अंक आप लोगों को बताऊं तो हमारे देश में 96% लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं आज की डेट में। 96 में से 86% लोगों के फोन में इंटरनेट है, और वो 86% लोग जो हैं वो लगभग 5 से 6 घंटे अपने फोन पे व्यतीत कर रहे हैं। तो फोन के अंदर जो कंटेंट है उसका स्क्रूटिनाइजेशन या उस पर एक लगाम लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इंडिजिनियस एप्स बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो हमारे इंस्टाग्राम हो, हमारा सोशल मीडिया हो, हमारी पद्धति हमारे सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग चले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वही हैं। इन्हीं सब चीजों को ये टेक्नो पॉलिटिकल सोशल कल्चरल इन्वेजन जो ये उनसे लड़ाई लड़ने के लिए और उसके लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ सारे देश के पूरे देश के युवाओं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म जहां पे आके वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल सकें। हम लोगों के 2-3 स्लोगन्स हैं, दैट इज स्टॉप रेंटिंग स्टार्ट बिल्डिंग। चीखना बंद करो, बनाना कुछ चालू करो। स्टॉप स्क्रोलिंग स्टार्ट सॉल्विंग। फोन पे स्क्रोल करना जो है, आप अपनी 1 घंटे तक रील्स देखते रहते हो, स्टॉप स्क्रोलिंग, स्क्रोल करना बंद करो, कुछ चीज का समाधान सॉल्व करना चालू करो। सो दैट इज द बेसिक मोटो कि इसके अंदर हम लोगों को किसी के और के पास, सरकार के पास नहीं जाना है। हम लोग अपने लेवल पे क्या इसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे वार्तालाप समाधान दे सकते हैं, कैसे एक समन्वय बिठा सकते हैं, वो हम लोगों का एक बेसिक
0: मोटो। खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ओनरशिप खुद लेनी पड़ेगी,
1: बिल्कुल।
0: और देश का जो युवा है वो देश का भविष्य है, और जब देश का युवा उद्यमिता की तरफ बढ़ता है तो बदलाव की उम्मीद जन्म लेती है। और निश्चित रूप से हमारा देश युवा देश है और देश का भविष्य बहुत सुनहरा है, और जिस तरीके से आपने उद्यमशीलता की बात बताई, अगर उस रास्ते पे चला जाए तो देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं करण बहादुर श्रीवास्तव साहब, आपने उद्यमिता के ऊपर और राष्ट्र निर्माण के ऊपर बहुत सारी बातें हमारे युवाओं को खुल करके बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को AIR पे बुलाने के लिए। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। हमारा आज का विषय था उद्यमशीलता, सपनों से हकीकत का सफर। इस विषय पर आज के मेहमान करण बहादुर श्रीवास्तव जी से बात कर रहे थे दीपक निषाद। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी सागर से। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

0: साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: आकाशवाणी सागर का प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:50 हुए हैं, सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले तुषार जोशी और साथियों के स्वर में अमिताभ भट्टाचार्य की शब्दरचना। इस गीत को संगीत से संवारा प्रीतम ने और फिल्म का नाम छिछोरे।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 735 FEE रोटावेटर के साथ मात्र 7,21,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096977
0: 8720009677।
2: आइए अब चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अमिताभ वर्मा का लिखा हुआ गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में। शांतनु मोहित्रा ने इसे स्वरबद्ध किया है और फिल्म का नाम पीके

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सागर है, 9 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। तब तक सुनते रहिए ये गीत।

आरती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए वीर ब्रदर्स अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में बागी फिल्म का गाना, कुमार के बोल और वीर ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मैंने हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, अभी संदेश से पहले आप सुन रहे थे फेम फिल्म का गाना विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुनहरे नामकन से। अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, लीजिए आप सुनिए करण शिंदे की आवाज में लुका छिपी फिल्म का गाना। निर्माण है गीतकार और संगीतकार है तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय।

आरती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, अर्थात खाद्य की हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों फसलों की कटाई से लेकर भंडारण तक खाद्य पदार्थों की हानि होती है, साथ ही बड़ी मात्रा में तैयार किए गए भोजन की भी बर्बादी होती है, जबकि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को भूखे सोना पड़ता है। अतः ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक स्तर पर खाद्य पदार्थ की बर्बादी को रोकें। इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

खुशियों का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं

0: साधक।
1: ओरे पथिकुवा मत जइयो वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: 1 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।

0: दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें, तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
1: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली रंगों से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुफीर इंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में ओ रोमियो फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साथ एक आवाज है कद्दन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झंकार, खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: यानी के भाईजान महदूद, यानी के बादशाह महदूद तशरीफ ला रहे हैं।
2: आ भाग रही थी मैं, काले से डर गए क्या?
3: हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले।

0: गोरे गाना तंदाना ये रेशम बाला तंदाना ये चोला गाना तंदाना आए तेरे खयाला तंदाना गोरे गाला तंदाना ये रेशम बाला तंदाना ये चोला गाला तंदाना आए तेरे खयाला तंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए रुपया।
1: दोस्तों इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, घरो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा पलटन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम, बोल दो बापू, बोल दो बेटा।
4: बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपया, सबसे भला रुपया हाय रुपया हाय रुपया भैया सबसे भला रुपया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपया।
5: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दीवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो

भी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, ये तो ओल्ड थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बेटी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, तो ओल्ड थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तू देखो कभी न कर सकता मेरे यार। जाग कर लौट जाता की न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर बड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसको पैदा वो ईश्वर है ना मैया, ओल्ड थिंग इज दैट भैया सबसे

विनोद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: Legal!
1: Bat kama, bat kama, bat.

0: ரம்ஜானே பஷா பக்கம்மா பக்கம்மா ரம்ஜானே பஷா பக்கம்மா பக்கம்மா மை ஆஜ் பஜானே வாலா ஹூ தேரே தில் கா தஷா பக்கம்மா தில் கா தஷா பக்கம்மா பக்கம்மா
1: எங்கென்னா எங்கென்னா
0: பக்கம்மா பக்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वणक्कम जी
4: ओ फोन चाहिए ना
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए खिड़की बंद करना
4: है
3: खिड़की बंद करना जी ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल के देखता है ना
4: देखने दो सुनने दो जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है
3: पहले बोलना ऐसा बात दाई बोला तुम आना गाना गाना आना
5: तुम नहीं गाना तुम जाना हम गाना
3: ये हम जाना तुम गाना बाप का राज है जब बोला ये हम तेरा गोला बनाना गोला या ताली दे रहे हैं गाना गाना चल देवी तुम बता
2: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
6: यक चतुर नार करके सिंगार यक चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये अद्भुत जात

0: அனுதம்
1: ஐயோ
0: அனுதம்
1: அனுதம்

0: चतुर नार
1: मेरे मन के पार ये भूत क्या था

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला
1: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देवबर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आरडी बर्मन को पूरी आजादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना। संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
2: सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ

0: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
1: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: सतिया?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सतिया?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाऊंगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। मेमून साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि मेमून साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

आया मैं लाया, चलता फिरता हो चल आया मैं लाया, चलता फिरता हो चल, गर्मा गर्म पकौड़े।

0: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
1: हमसे हर की दुनिया होगी ना अपनी हर सनम, हम तुम सच्चे हैं दोनों सच्चा हमारा प्यार सनम। तेरा दिल और मेरा दिल एक हो जाएंगे हिल मिल, ऐसा कुछ मैं खो जाऊंगा तेरी शक्ल का मैं।

Bye-bye.

0: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर, कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: संस्कृत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल, वाचन स्वर दीपा सिंह। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात सेवा संकल्प अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिन के अवसर पर जिले में यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान में सेवा, स्वच्छता, सामाजिक सहभागिता, हितग्राही कल्याण और युवा नवाचार से जुड़ी गतिविधियां हो रही है। इसी अभियान के तहत अशोकनगर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी कंपनियों ने युवाओं का चयन किया, जिसमें 316 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ और 258 को ऑफर लेटर दिए गए। वहीं स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े 457 हितग्राहियों को करीब 2 करोड़ रुपए का लाभ भी दिया गया। सेवा संकल्प अभियान के साथ जिले में जलजन सेवा यात्रा भी पहुंची। बड़नगर से वाराणसी तक निकाली जा रही इस यात्रा के अशोकनगर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य जल संरक्षण और जन भागीदारी का संदेश लोगों तक पहुँचाना है। अशोकनगर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग और सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग की इस पहल के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। पहले चरण में शासकीय महाविद्यालय के 16 छात्रों का चयन किया गया है। आपात युवाओं की एक और जिम्मेदारी की, अशोकनगर में युवाओं को आपदा मित्र के रूप में तैयार करने की पहल की गई है। 18 से 40 साल के कॉलेज विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवकों और तैराकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा और जिम्मेदारी की इसी कड़ी में जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है। ग्रामीण पाठशाला में विद्यार्थियों को 4 तरह के कूड़ेदानों के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों को समझाया गया कि अलग अलग तरह के कचरे को अलग अलग रखना स्वच्छता की पहली सीढ़ी है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी जिले में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम चल रहा है। 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों, माताओं और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। इसी बीच अशोकनगर के 9 पोस्ट मैट्रिक कन्या और बालक छात्रावासों में नए मेस शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के जिला स्तरीय 106 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में नए मेस का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। इसी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब बात न्याय की। अशोकनगर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 16 न्यायालयीन खंडपीठों के जरिए 1,298 मामलों का निराकरण किया गया। समझौते के आधार पर निपटाए गए मामलों में करीब 9 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित हुए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी जिले में लगातार जागरूकता गतिविधियां चल रही हैं। 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जाँच की, पोषण की जानकारी दी और आयुर्वेदिक दवाएं भी वितरित की। इसी तरह वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर अशोकनगर में लोगों को रेबीज से बचाव के लिए जागरूक किया गया। प्रचार सामग्री के जरिए बीमारी से बचाव और सावधानी का संदेश दिया गया। वहीं डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी अभियान चलाया। अशोकनगर की पहचान चंदेरी की साड़ियों से भी है और अब इस पारंपरिक हुनर को और निखारने की तैयारी है। प्रदेश का हथकरघा संचालनालय चंदेरी में साड़ी बुनाई कौशल प्रशिक्षण शुरू कर रहा है। 3 महीने के इस प्रशिक्षण में चयनित प्रशिक्षणार्थियों को बुनाई का कौशल सिखाया जाएगा और शासन की ओर से 750 रुपए मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जिले में बहादुरी और मानवता के काम करने वालों को सम्मान देने की तैयारी भी है। गृह विभाग ने जीवन रक्षा पुरस्कार 2026 के लिए योग्य लोगों के चयन के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और जिला होमगार्ड के जरिए ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जिन्होंने किसी की जान बचाने में साहस और सूझबूझ दिखाई हो। चयनित लोगों के नाम और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन भेजे जाएंगे। अंत में बात आस्था की। अशोकनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण पर्व के रूप में मनाया गया। जिले के 4 मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्टर साकेत मालवीय ने इन मंदिरों पर श्री कृष्ण पर्व मनाने के निर्देश दिए थे। वहीं इन दिनों जिले में पितृपक्ष में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु नदी और तालाबों में स्नान कर अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं और घरों में श्राद्ध, दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य हो रहे हैं। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागिनी। कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे गायन। सबसे पहले सुनते हैं राग सिंध भैरवी में। ये गायन कलाकार हैं पंडित अजय पोहनकर।

0: दिवाली से पहले दिवाली धमाका।
1: स्वराज 735 FEE रोटावेटर के साथ मात्र 7,21,000 रुपए में, नियम व शर्तें लागू।
0: अन्य लाभों की जानकारी के लिए विजिट अवश्य करें।
1: 50 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में राज ट्रैक्टर्स खेमलासा रोड बीना,
0: माणिक मोटर्स छोटा करीला सागर।
1: संपर्क करें 8720096 77
0: 8720096 77।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागिनी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से, और आज आपको सुनवा रहे हैं पंडित अजय पोहनकर से गायन। आइए अब सुनवाते हैं विलास खानी तोड़ी में ये गीत।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रागिनी में आज आप सुन रहे थे गायन। हमारे आज के कलाकार थे पंडित अजय मोहनकर। इनसे आप सुन रहे थे राग सिंध पहाड़ी में गायन, और जिसके बोल थे सजनवा तुम क्या जानो प्रीत, और बिलास खानी तोड़ी में आपने सुना कोयलिया का है। इसके साथ ही राग रागिनी अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे श्रोताओं की, और ये व्हाट्सएप फरमाइश है। सूर्यबाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज स्वीट अंशुमन बेबी ओबी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरेत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदेबी, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, सारंगपुर बक्सर से संगीत को सुना चाह राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं सैनिक फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाजें दी हैं साधना सरगम और कुमार सैनी ने।

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की। व्हाट्सएप पर यह संदेश हमें मिले अडार नाद घाट छत्तीसगढ़ के इन श्रोताओं का। यह है संदेश माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, राजकोट गुजरात के श्रोता हैं रश्मि झरनू और भरत कुमार। और एक पत्र भी मिला है, हमें इसी गीत को सुनना चाहा है, लक्ष्मीपुरा चोपड़ा के सामने सागर से एनआर शिवात्री, श्रीमती केशर, हेमंत, योगेश, कैलाश, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और समस्त शिवात्री परिवार वालों का। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं सुहाग फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाजें दी हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें।

कार्यक्रम का अगला अनुरोध इन सभी श्रोताओं का। पहले ये पत्र हम शामिल कर रहे हैं माँ बम्बेश्वरी धाम सांकरा सोमनी राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है श्रोताओं, और हमारे ये श्रोताएं नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप, मिलिंद कुमार, नेहा देवी साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू। और ये कुछ व्हाट्सएप पर संदेश भी प्राप्त हुए हैं संगीत के लिए। नेपानगर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टिले, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आप सभी श्रोताओं का अनुरोध हम पूरा करेंगे और सुनवाएंगे हम दिल दे चुके सनम फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ें दी है कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने।

अहमद सलामत और कविता कृष्णमूर्ति और उनके संगी साथियों के गाए कुछ ये आप हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत सुन रहे थे। फरमाइश अन्नपूरी की हमारे श्रोताओं की और अब अगली फरमाइश की बारी। आप सभी हैं ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर के श्रोता परमलाल विश्वकर्मा दशरथ विश्वकर्मा मनोज श्रीमती पूना आरती विश्वकर्मा दीपेश जागृति मानवी हर्षिता तनु मनु और समस्त विश्वकर्मा परिवार पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशु तिशु अर्णव आनंद सत्यम आनंद बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल के श्रोता हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं मासूम फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी है भूपेंद्र और सुरेश वाडकर ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए इन श्रोताओं के। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी के श्रोता हैं। जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। मोजागिरी कॉलोनी कोपर गांव से ये श्रोता हैं सुरेश, माफ कीजिए कोजागिरी कॉलोनी कोपर गांव से ये श्रोता हैं सुरेश मालोड, वर्षा निवासा से अमोल लोखंडे और शारदा लोखंडे। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करेंगे और सुनवाएंगे चांदनी फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और विनोद राठौर ने। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत चांदनी फिल्म से।

चांदनी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद से चंचल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी सागर है। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
1: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहार पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे, ये सब बात बताते हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान।

0: हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है।
0: जी।
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
0: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के दो एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के दो ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
0: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
0: तो क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
0: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था, उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
1: लेकिन विवेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
0: जी।
1: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
0: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
1: तो विवेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
0: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
0: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया। वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
0: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
0: जी।
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को ये पुरस्कार प्रदान किया।
0: जी।
1: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
0: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
1: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा जी जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
1: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
1: तो 8800044559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ।

0: उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
1: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
0: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
1: है? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
0: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
2: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
0: बादशाह ने कहा,
1: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
0: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
1: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
0: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
1: बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
0: बीरबल ने उत्तर दिया,
3: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
0: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
5: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साई साई करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाले का बना क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: उन्हें बता देते हैं।
4: ही नहीं सकता, कहीं दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है। समझा। सुनो।
5: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
5: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
5: जी सर।
4: जय हिंद।
5: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रही। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर!
3: आगे बढ़ो।
4: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
5: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
4: जी साहब।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
3: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का। फायर! हुकम सिंह
4: जी सर,
3: एलएम जी सवाल छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
6: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
5: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
6: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
5: अच्छा।
4: सर, यही मशीन गन।
5: हुकुम सिंह, एक काम करो।
4: जी।
5: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
5: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को,
4: जल्दी करो।
5: जी सर। बांध दिया सर। ठीक से बन गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी। टाइट करके, खींच के इस तरफ लेके, हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
5: ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
6: संभल कर, संभल कर।
5: सब यहां सर टिका लीजिए
6: सर। ऐसे
7: कालिका माता की जय।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगे। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
7: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
7: साथी, हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
5: साहब,
7: तुम लोग आगे निकलो।
4: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब,
6: हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
7: नहीं, नहीं, बात को समझो। अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
6: नहीं साहब,
7: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
6: नहीं साहब, नहीं याद है।
7: इट्स एन ऑर्डर
6: सर।
7: जाओ, अलविदा अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
1: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
0: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
8: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
0: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
1: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांग ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की

0: प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 11:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

रंग तिरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ गाना, पायल देव का संगीत, एल्बम का नाम है दिल लौटा दो।

ये आवाज़ थी सुमित्रा लाहिरी की, बोल तबस्सुम के संगीत सुमित्रा लाहिरी का और एल्बम अंदाज़े तबस्सुम।

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, दिल झूम झूम नाचे, इस एल्बम का गाना, गीत और संगीत ललित सेन का। इसी के साथ आज का रंग तरंग ये कार्यक्रम संपन्न होता है। रंग

हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में। विविध

0: भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिव्यांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: तनिना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दिल, हृदय, दिल शब्द के गाने। आज विश्व हृदय दिवस है तो दिल शब्द के गाने। 24 घंटे इस फिल्म का ये पहला गाना आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज़ों में, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत है बिपिन बाबुल का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना अब आपको सुनवाते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आह।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आज विश्व हृदय दिवस पर दिल शब्द के गाने आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में आईना फिल्म का ये गाना, समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

शकील बदायूनी का लिखा और सी रामचंद्र का संगीत बद्ध किया। ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म का नाम जिंदगी और मौत।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमरदीप फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया सी रामचंद्र ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: वाह वाह प्रभात, वाह, बहुत
1: बड़ी तालियां उनके लिए।
2: आकाश दीप फिल्म का गाना लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आंधी और तूफान इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फारूक कैसर के बोल, संगीत है रॉबिन बनर्जी का।

दिल लाया मैं बचा के पंजाब से, कितना प्यार देखो मुझको जना।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज़ में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का

0: छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर पहुंचेगा।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: सुरीला सफ़र, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं मंजू द्विवेदी। आज सबसे पहले आपको जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तो पढ़ ली है और पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें लिख भेजी है। पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहते हैं कि हंसने हंसाने से हमारी और हमारे दिल की सेहत अच्छी रहती है। हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। किसी को हंसाना ये बड़ा कठिन काम है, पर कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जी हाँ, कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जीवन में अगर हंसी का ख़जाना ना हो तो जीवन खाली डिब्बे की तरह होता है। जो दिल वाले होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, उनके लिए रुपया सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि उनके लिए तो किसी की सादगी, किसी का बांकपन दिल पर तीर चला देता है। कोई चतुर जब हंस की चाल चलता है तो भी माहौल ठहाकों वाला हो जाता है। कभी कुछ अटपटे और चटपटे शब्द जब घोड़ा गाड़ी या रिक्शा निराली पर लिखे हों तो भी हंसी आ जाती है ना। तो बताइए, किसने चुराई है आपकी निंदिया? ये है आज की इबारत या टेक्स्ट, जिसमें बहुत सारे शब्द छुपे हैं, जिसमें बहुत सारे गाने छुपे हैं। और विषय की अगर बात करें तो आज अभिनेता महमूद को हम याद कर रहे हैं। और आज विश्व हृदय दिवस भी है। हृदय यानी कि दिल, दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो हम सुन भी रहे हैं कि दिल ने धोखा दे दिया, या दिल हमारे वश में नहीं रहा, दिल पर काबू नहीं रहा, दिल ने अचानक ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं दिल को लेकर, हृदय को लेकर। तो अपने हृदय का, अपने दिल का ख्याल रखिए। और भी बहुत सारे सवाल हमारे होंगे आगे, लेकिन एक साथी की ये बात आपको पढ़ के सबसे पहले सुना देते हैं कि हंसना और हंसाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा का उल्लास है। बिना हंसी या मुस्कुराहट के जीवन को नीरस, रसहीन या मूर्छित कहा गया है। हंसी के बिना मानव पाषाण हृदय के स्वरूप हो जाता है, जिसमें संवेदनाओं और भावनाओं के अंकुर नहीं फूटते। जैसे वर्षों से कोई भूमि बंजर पड़ी हो, श्रृंगार रस में मुस्कान लिए हुए चेहरे की सुंदरता के लिए अनेकों उपमाएँ हैं। कहीं पर खिलते हुए कमल या दामिनी से चपलता, कहीं चांद सा रोशन चेहरा जैसे शब्द गढ़े गए हैं। मुस्कान, हंसी आंतरिक सौंदर्य का बाह्य प्रकटीकरण है। दूसरों को हंसाना बहुत कठिन होता है, ये एक उत्कृष्ट कला और साधना है। जी हाँ, ये कला है जो बहुत कम लोगों में होती है। तो हो सके तो आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाइए, मुस्कराहट लाइए, किसी के हंसने की वजह बनिए और फिर देखिए आपके चेहरे पर अपने आप हंसी या मुस्कराहट आ जाएगी और उससे आपके दिल की सेहत भी तो अच्छी रहेगी ना। चलिए गीत सुनते हैं। नीलकमल फिल्म का ये गाना सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे। मन्ना डे की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल,

हैं। आज कॉमेडी किंग महमूद जी की याद का दिन है, उनको मेरा शत शत नमन। हंसना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी कि श्वास लेना। हंसने से तनाव दूर होता है, पॉजिटिविटी आती है और मानसिक शांति एवं ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो दिल को बेहद सुकून और खुशी मिलती है। हंसते गाते कट जाए ये दिन। और एक साथी लिख रहे हैं कि हास्य अभिनेता महमूद जितने बेहतरीन कॉमेडियन थे उतने ही गहरे भावुक अभिनेता थे। फिल्म कुंवारा बाप में एक दिव्यांग बच्चे के गरीब पिता के रूप में उनके मार्मिक अभिनय ने हर दर्शक की आंखें नम कर दी थी। महमूद सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार थे। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो दिल की और हंसने हंसाने की बात ही होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले धर्म पत्नी पास बैठकर बोली कि सगाई के बाद और शादी के शुरू के दिनों में आप दिल से मेरी कितनी तारीफ करते थे। मैंने कहा कि वो तो अभी भी मैं कहता हूँ। फिर धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ज़्यादा तारीफ करते थे, तो मैंने कहा देखो जब हम नया मोबाइल लाते हैं शुरू करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। चलिए आज हंसने हंसाने की बातें भी हैं और दिल की सेहत की बातें भी है। तो आज हम आपसे विश्व हृदय दिवस पर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल लोगों के हृदय की जो सेहत है वो गिरती चली जा रही है, तो आपको क्या कारण नज़र आते हैं और किस तरह से हृदय की सेहत को हम पहले की तरह अब भी ठीक रख सकते हैं, इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप हमें बताइए। और चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जौहर महमूद इन गोवा, इस फिल्म का ये गाना है। मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि मैं अपनी योग क्लास में रोज़ हास्यासन करवाती हूँ, पहले नकली हंसी लेकिन बाद में वो असली हंसी में परिवर्तित हो जाती है। दिल को दुरुस्त रखने वाले आसन भी हम लोग डेली करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और आज सुरीला सफ़र की प्रस्तुति जो है उसमें इस तरह के गीतों की इन्होंने बात की है। और लिखा है कि आज सुबह मैं 8 बजे जो उठा हूँ दिन के, तो उसके बाद मैं अब हंस सका हूँ, अच्छा लग रहा है। अध्यापक को भी वर्ग में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हास्य और विनोद करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सच खाली में ही तो समूचा विश्व ही अवस्थित है। और यह खालीपन तो सभी के हृदय में पाया ही जाता है, सोचिए अगर यह खालीपन नहीं रहता तो फिर हम कहाँ रहते। जी, आपकी ये बात है। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हंसना सेहत के लिए और ख़ास करके हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हंसते रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हंसते नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है, बता दे तू। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, महमूद जी अपना मेहनताना मुख्य अभिनेता से केवल 1 रुपये कम लेते थे। उनका किसी भी फिल्म में किरदार जो भी रहे, पूरी फिल्म की जान रहते थे। और फिल्म में कॉमेडी तो को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। जी हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए, अब सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। महमूद और साथियों की आवाज़ें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है, अगर आपको पता है तो हमें बताइए।

भैया तुम मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट भैया सर।

आपने सुना, इसमें संगीत बासु मनोहारी का। अब आपको तय करना है कि सबसे बड़ा क्या है आपके जीवन में, रुपया, पैसा, सेहत, हंसी या खुशी, या अपने सगे संबंधी। चलिए, महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज हमारे खान पान में शुद्धता की कमी है और लोग अक्सर खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई ज़रूरी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल के बारे में, जिससे दिल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल के रहन सहन का तरीका बहुत तनावपूर्ण रहता है, खान पान भी ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मनोरंजन में कमी मिलकर तनावपूर्ण जीवन बनाते हैं, फिर दिल के डायबिटीज़ आदि रोग भी हो जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मानव प्राणी ही ऐसा है जो हंस सकता है और पड़ोसन एक चतुर नारी है जो हमें हंसाती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोई सबसे ज़्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज़्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही है कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की ज़रूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की ज़रूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए, शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते। ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ। फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए। जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले, तो आपको लाभ अवश्य होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है, हंसना मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। सबसे बड़ा रुपया, इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने 4-5 लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था। वो फोटो आज भी देखती हूँ तो अपने आप चेहरे पर हंसी आ जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते हृदय, क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि पूरे शरीर को ही नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते। अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई, और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है। यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियां खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है। किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है, और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है। अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं, कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर बहुत हंसता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है? चाहे कितनी ही हंसी की बात हो, वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा। चलिए अगला गाना गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और महमूद की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना।

0: ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो।

लक्ष्मी बाला चंदाना, ये सोला साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ।

0: चाली तक जमी तक चाली तक जमी तक झाला आंबो तक झुगी तक ताडी गेन टाक नाक तक जमी तक नाक नाक जमी टाक नाक नाक जमी टाक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दागु तारी गेटे ताक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दागु तारी गेटे जम तारी जग तारी ताक नाक नाक ता जिन ता जिन ता जिन ता जम तारी जग तारी जाने जाने को ता जिन ता जम ता जिन ता ताक जंग कर दम कर दम कर दम ताक जंग कर दम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी
2: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध ख़राब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहा के लगा कर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूँ कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ़ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है, तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे ज़रूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो ख़त्म ही ना होता। एक ज़माना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहा के लगा कर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंस

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ये पढ़ते पढ़ते गीत कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसे, हंसे हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए, हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर

मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुंच गए वैसी ही टी शर्ट और ड्रेस पहनकर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी इस गीत में, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले इस गीत में जो पहन रखी, और ये गीत गाने लगे बस फिर क्या था महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं आत्मा की औषधि है, जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव बीमारी अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता, इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी, और हमारे प्राचार्य थे उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है, और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना अभी हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुरनार, ये गाना सुनवा के जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती जी बहुत हंसमुख थी और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है, कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है, चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

एक साथी ने ये बात लिखी कि दिल में खुशी और सुकून हो तो चेहरे की मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, और बस यूं ही हंसते मुस्कराते रहिए, आपके मुस्कान किसी के दिल में उजाला कर सकती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हुई भारी वर्षा से बिजली आपूर्ति 5 दिन से बाधित है, किसी तरह मोबाइल चार्ज कराकर विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हों, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो हैं वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुना कर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुना कर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है। और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आशा भोंसले और महमूद की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुंवारा बाप इस फिल्म का गाना।
1: Uriah!

हंसते हंसाते रहिए और अपने हृदय के अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं पुरानी फिल्म साजन का एक गाना, और आवाज़ें हैं इसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: रेशम की डोरी

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह असीम गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरू ढांडा की जीत ने नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी ये जीत भारतीय युवाओं को निशानेबाजी में जाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में लगभग 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
1: आज की कैबिनेट में 24,500 करोड़ के कामों को स्वीकृति दी। दमोह कटनी 105 किलोमीटर का मार्ग जिसकी लागत 4,470 करोड़ रुपए है, इसकी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सिंगरौली में पूर्व में 450 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के साथ बन रहा था, वहां पर 150 सीटें MBBS की होने के बाद 155 बिस्तरी का अस्पताल एक नया जो उसके साथ में रिविजन होगा, 372 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई।
0: बुरहानपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शाहपुर स्थित सांदीपनी विद्यालय में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर विद्यार्थियों एवं नागरिकों को जनसेवा, सामाजिक सहभागिता और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं नेपानगर के शासकीय महाविद्यालय में भी छात्र छात्राओं ने आकर्षक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर आमजनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया। कटनी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान विशेष अभियान का 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजन एवं अनाथालय सेवा तथा नेत्र परीक्षण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और सैनिक परिवारों का सम्मान तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में आत्मसमर्पित नक्सलियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत पुलिस लाइन में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में महिला और पुरुष आत्मसमर्पित नक्सलियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने ड्राइविंग, जेसीबी ड्राइविंग और सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण लेने की इच्छा जताई थी। उन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ मुख्य धारा से जोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार किया जा रहा है।
2: मध्य प्रदेश में जो पुनर्वास एवं राहत नीति है उसके पर भरोसा करके करीबन 13 नक्सलाइट्स ने मध्य प्रदेश में और सीमावर्ती एमएमसी क्षेत्र में करीबन 45 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया। हमने जितने भी नक्सल्स यहाँ पर सरेंडर किए उन लोगों के बैंक खाते भी खुले हैं और उसमें उनको जो फाइनेंशियल राहत वो मुहैया कराई जा चुकी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो भविष्य में अपना जीवन यापन कर सकता है। अधिकतर लोगों की गाँव के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से गाँव को छोड़ चुके थे, तो वहां पर खेती किसानी करना, अन्य चीजों को करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है जैसे हार्वेस्टर चलाना, ट्रैक्टर चलाना, कोई जो बीज है उसकी देखरेख करना, फर्टिलाइजर्स का यूज, इन सब के बारे में भी इनको जानकारी दी जा रही है।
0: अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद उपनिर्वाचन में सुबह 11 बजे तक 47.88% मतदान दर्ज किया गया है। कटनी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में विश्व रेबीज दिवस पर रेबीज प्रबंधन विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुरैना में चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए कलेक्टर और SP ने देर रात विभिन्न गांवों का दौरा कर SAF चौकियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में 30 सितंबर से इंटर स्कूल अंडर 14 डायरेक्टर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ में शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 25 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का समापन हुआ। बुरहानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 1 से 7 अक्टूबर तक बकरी एवं पोल्ट्री पालन पर 7 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण जारी है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक

0: यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की है सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है महिला लोगों के लिए, एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकअप बोर्ड और वाकअप काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकअप बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकअप काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी सूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में मैं हूं आपके साथ जावेद खान। शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के एक गाने से, जिसको लिया है हमने फिल्म सरगम से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नगीना मोहम्मद अजीज। इन्होंने लिखा है सरोचोक अमरावती से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब, मुजतबा सादिक और सादिक। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है धामणी मनोरा ज़िला वाशिम से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत्तर डेरे ने इसी गाने को पसंद किया है। लिखने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। इन्होंने लिखा है प्रमिलागंज आलोट ज़िला रतलाम से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना है फिल्म धर्मवीर से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये फिल्म 1977 में रिलीज़ हुई थी और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़ प्रिंस से, एकांश गायकवाड़ बदलापुर मुंबई से, लिखने वाले हैं सिद्धांत गायकवाड़, प्रणेता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़ टुक टुक, आकार हाइट बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़ कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सिंहपुर बड़ा से, लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। कवई बारह राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, ग्राम सनोतिया, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, जिला गुना मध्य प्रदेश से, मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार, हिमांशु और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। सुनते हैं ये गीत।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, शैलेंद्र ने लिखा है और रविशंकर का संगीत है।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे, और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना, और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बम्बई का बाबू। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी हैं और मंजरी भी और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की, तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज़ का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
2: बिल्कुल।
1: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
2: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
1: सही बात है। और आज के विषयों की बात कर ले हम सबसे पहले।
2: देखिए हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे दिल से तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
1: तो तुमने भी विषय की बात
2: कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
1: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन।
2: जी।
1: चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
2: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें हैं ना आज की, दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। क्योंकि दिल से हम अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
1: बिल्कुल।
2: जी। तो इस तरह की बात
1: है, अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
2: बिल्कुल। तो, और मंजू जी राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें तो राई
1: नहीं
2: रुकेगी, नहीं वो भरभरा के गिरी जाएगी।
1: हाँ। तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती
2: वैसे
1: है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
2: बिल्कुल सही।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है, और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखें।
2: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी हैं और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है, संगीत। कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
2: बिल्कुल, आपका इशारा हम समझ गए।
1: चलिए सुनते गाना।

0: मंजरी ये गाना हमने सुना, दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना
0: कई बार, हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, चाहे खुशियों के दिन हो, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत सीधी बात लिखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी, वहाँ 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही हैं इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अब जल्दी ज़्यादा सुनाई देने पड़ गई कि तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियाँ सुनाई देने लग गई हैं।
0: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के ज़माने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं हैं और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं हैं, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज़ मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज़ वगैरह डाल करके इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे ज़रूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो हैं वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना, ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर और हंस लिया कीजिए, यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत ज़रूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है। तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है। देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे, तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के ज़िंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया है, लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहाँ ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है, रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है, बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं, जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य हैं। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताज़ा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीज़ों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां, फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती हैं चीजों का।
0: देखिए रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है, तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी है।
1: एक लिखते हैं कि मंजू जी, कि मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं, बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मज़ेदार और तीखे डायलॉग्स नज़र आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर तो दिखता
0: एक
1: है।
0: हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपने दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है, उसके बारे में बात करेंगे। अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर के में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज़्यादा रिसोर्ट्स के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट्स ऑफबीट यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफबीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में PGDM यानी कि MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसोर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसोर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसोर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसोर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसोर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वी रिसोर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसोर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसोर्ट्स में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
0: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। दूसरा, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। दूसरा, जब उनका घर वहीं है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोज़गार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुँचाना, ये भी इस चीज़ का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वीमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वीमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेंस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह के सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीज़ें उन्हें मिली हैं सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीज़ों को हम अच्छा करने के लिए सोचें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहाँ काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
1: जी,
0: या फिर वहीं जा कर के हम पैसा कमा सकते हैं, या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नज़र डालें, या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीज़ों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है, या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नज़र डालें, और कई बार क्या होता है जैसे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें, उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है, या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ये लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज़ को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती। तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

0: तो मंजी, गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है. और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना.
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी है.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है. अन्न के बिना तो हम रह नहीं सकते, कोई दिन ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हों. कुछ तो हम खाते ही हैं, पीते ही हैं, तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है. अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है. हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है. इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दे.
1: बिल्कुल. और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है. जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने में लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और ज़मीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं. क्योंकि दिन रात अपने खेत को सींच कर, बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्न लगता हुआ, दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती हैं, गेहूं की बालियां लग रही हैं, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं. और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है.

0: सकते, बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है, ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है, उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं, और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप ले लेते हैं, या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसका जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती है बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर की में जाते हैं, वहाँ की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहाँ की, उनकी बात की, वहाँ दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और देखो, जो भोजन व्यर्थ होता है ना, उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है, तो वहाँ खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती, बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं, और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूँ,
1: कैसे खा सकते हैं आप सोचिए,
0: जबकि उसके पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना ज़रूर चाहता है, और उस चक्कर में जब कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे लगता है।
1: वो तो खैर ये अपना सोचना, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीज़ें रखते हैं, और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टाल होते हैं, कि सब तो नहीं खा सकता कोई, तो ठीक है आप उन्होंने लगाया ये आप उनको अपना अपनी तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्न का स्वागत हिसाब से करें, वो ज़्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहाँ खाना होता है वहाँ दीवारों पर लिखा होता है, खाओ मन बचाओ नकन, और इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना झूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज़्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम किया है, आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
0: बिल्कुल
1: उसको व्यर्थ ना जाने दें।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है, और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता, बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है, और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो, और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में, बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
1: और हम लोग पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: हॉर्स उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना, तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारा दिल नहीं करता है
1: बिल्कुल फेंकना,
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं,
0: हमारे भी होश उड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप उसमें डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियां भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल
0: की,
1: हाँ, तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए।
0: हाँ,
1: कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दें, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो दूसरों को दे दें, जो भोजन आप खा सकते हैं, जो खाने लायक है उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं, राई का पहाड़, ये कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: मतलब जैसे कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती ना वैसी

0: लगेगी। और कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
1: वैसे
0: तो,
1: देखो मंजरी, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो इससे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद होता
0: है, उन्हें मजा आता है चटकारे लेके। हाँ। उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते ना मुंह से बात निकली।
1: हाँ।
0: किसी ने कहीं कहीं तक कही लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा उससे कहा उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
1: हाँ, जब एक ही बात अगर मतलब 5-6-10 लोगों तक तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका रहता है। यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता है।
0: तो बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी की, अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है। कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो,
1: लेकिन ये संभव नहीं
0: नहीं हो पाता।
1: किसने किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात ये है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसके लिए समय की भी ज़रूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे।
0: अच्छा है कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें फैलाने दो जिसको फैलाना है।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है, उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात,
1: थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए, और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके अगर उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
0: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राई जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहाँ तक है मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राई का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राई का पहाड़ बना ले उसकी बातों का जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना, वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राई, एक और लिखते हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को इलास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही, जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: उम्र है,
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज़ इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियाँ थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: क्या बात है, तो किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और हाँ,
3: पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं, और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप
3: बिल्कुल
2: सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्य का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्य का एक दाना भी

0: थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहाँ पर बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है।
1: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत, पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सकें, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
1: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें ज़रूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया है, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंक।
1: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नज़र डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज इस स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में, हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफ़ी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी जी जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज़।
2: हाँ, कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और ख़ासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज़्यादा रेडियो लोग ज़्यादा सुना करते थे।
1: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो हैं वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किए, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफ़ी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
2: चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिला, AD। तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे।
1: पर फिल्मी हस्तियों को आपने देखा है अपने घर?
2: हाँ,
1: बचपन से
2: वो देखा था, तो उस वजह से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी वजह से हूँ।
1: जी जी जी, उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम ऐसे चिन्ह नजर आए?
2: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में, दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी।
1: अच्छा।
2: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज़्यादा दूर लगा था, अब और ज़्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम वहाँ पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा, मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया।
1: जी जी।
2: तो मुझे डरना ही था, इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला, अरे ये अच्छा एक्टर है। लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब कि, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनैलिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना नहीं है।
1: नहीं, आप जो हैं, जिस भी पात्र में ढलते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
2: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर एसएससी बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया, और दो साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में तीन साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था
1: जी।
2: तो वहाँ पर मतलब मेरी पूरी काया पलट हुई एकदम। वहाँ काफ़ी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफ़ी शुरू हो गया था
1: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
2: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना स्कूल में मैं कुछ कर पाया। इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहाँ पर नाटक हुआ नहीं, एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और फिर वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली, वहाँ पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री

0: मारी थी
1: अच्छा
0: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे, पता नहीं क्यों. तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूँगा, वो हुआ ही नहीं. फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया.
1: जी
0: फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए.
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे. फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं.
0: मेरी पसंद का कोई गीत, यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के. आपकी याद आती रही रात भर अगर.
1: अच्छा,
0: गमन से
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे.
0: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना.

0: क्या बात है, सुनवाते हैं गीत
1: अभी से मैं
0: अपने
1: ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं, हर गीत पे
1: जैसे
0: हम
1: वो
0: नहीं
1: कहते हैं ना
0: गवाएंगे
1: कि
0: आपको अगर
1: बच्चों
0: आप
1: को,
0: ऐसा
1: हाँ,
0: चाहेंगे तो।
1: कि बच्चे के बोलते हैं कि
0: जी जी
1: महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैंने महाराष्ट्र उसकी स्पेलिंग बताओ, तो नहीं मैं गोवा में रहता हूँ
0: नहीं, आप
1: तो
0: बेफिक्र रहिए
1: अब मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है तो उससे पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई, पहले मैंने अच्छा। मेरा पहला काम जो
0: पहला
1: है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी।
0: हाँ हाँ।
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में राची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया सूरज जी को असिस्ट कर।

0: थे और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके ज़रिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे नव कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया और मेरा एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया। और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिम्पल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी। परेश
1: जी
0: रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मज़ा आया था। मेरा पहला काम था वो और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
1: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है।
0: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत। मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा
1: अच्छा
0: योगदान है। तो
1: जी,
0: उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो
1: झुकाव,
0: उस तरफ
1: रुझान।
0: बढ़ाया, रुझान। तो वो उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था
1: जी
0: जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था। तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, राजश्री प्रोडक्शंस में। वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे।
1: जी
0: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है।
1: कमांड है।
0: तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब MTV के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
1: अच्छा।
0: उसमें उस वक्त VJ थी वो, उस वक्त MTV में। तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स, VJ लिंक्स जो होते हैं
1: जी
0: कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज़ लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ETC। मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का, रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफ़ी। और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल 2 साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया।
1: जी
0: फिर नौकरी की मैंने MTV में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल V में था। तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी। मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज़।
1: जी
0: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो MTV के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मैंने वहाँ पर सीखा। बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए, जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ, जिनके साथ,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं MTV में।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी
1: क्या बात है, क्या
0: थैंक
1: बात है,
0: यू।
1: बहुत खूब।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफ़ी
1: जी
0: चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था। 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था, और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो हैं स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज़ दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था उस
0: जी
1: ऐसे रोल के लिए। डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते।
0: जी जी
1: बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को, और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ। इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लम डॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था,
0: जी
1: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर। फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था, और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैंने बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले, और पहले उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
0: अच्छा
1: उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने,
0: बिल्कुल
1: ना मुझसे मिलने की ज़रूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए। और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज़ की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी।
0: जी
1: तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी ज़िंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता
0: और जब तक है जहाँ उससे भी
1: हूँ।
0: आप रिलेट किए, उससे कैसे जुड़ना
1: हाँ,
0: हुआ?
1: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था।
0: जी
1: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज AVP प्रोग्रामिंग, और वहाँ कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फ़ोन आया,
0: अच्छा
1: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके
0: जी
1: सीन्स के साथ
0: अच्छा
1: ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ। उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो जो मैं प्ले करने वाला
0: जी
1: था
0: जैन
1: उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था, उस वक्त
0: अच्छा
1: वो शानू की असिस्टेंट थी,
0: हाँ
1: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर

0: रहा था। और थैंकफुली जो मेरी इमीजिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब कल्टी
1: मौका
0: मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फ़ोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फ़ोन आया और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में और वहाँ पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुँचा ही था मैं कि आधे घंटे में फ़ोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है।
1: अच्छा, दो
0: दिन
1: बाद के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
0: हाँ हाँ सेम रोल का ही मैंने इतनी बार ऑडिशन दिया और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए था
1: वो कुछ
0: और मैं उस वक्त एकदम ऐसा था 90 किलो का।
1: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार बार राउंड्स देने पड़ते हैं?
0: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत ज़रूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं MTV में मैंने मतलब काफ़ी जो हम स्केच कॉमेडीज़ करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा MTV बकरा करता था, अदरवाइज़ मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं
0: बहुत
1: कहीं,
0: सारे हाँ।
1: बहुत सारे, तो कैसा महसूस हुआ या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आप कि नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं आगे और कोशिश करेंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
0: नहीं मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसीलिए क्या था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत। और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता। और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है, हम सब इसमें तुम्हारे साथ में हैं। तो वही और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है, तो बस जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा।
1: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट वो नजर आया फिल्मिस्तान
0: जी,
1: फिल्म में। हाँ। तो वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने, उसमें डायलॉग भी है हाँ, ये कि मेरा जन्म
0: मैंने लिखे हैं फिल्म,
1: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ है।
0: यस।
1: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे
0: फिल्मिस्तान? मैं असल में जब मैं तब ये UTV मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मेरे ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है बहुत सही है, ज़्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है, अब मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में, मेन लीड में वो भी. बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला, उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए, और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया. तो वो एक, जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया, और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई, और उसी दौरान फिल्मिस्तान
1: भी,
0: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की, वो मेरे हाथ ही नहीं आई. जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कंधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई.
1: बिल्कुल, कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिल जाता है.
0: वो मिल जाता है, तो वही हुआ मेरे साथ में. और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम.
1: बिल्कुल. यहाँ पर आपकी पसंद का गीत
0: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है. मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में. और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है.
1: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को.

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफ़ी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोड़ा मतलब मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है।
0: भी आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं, हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा। बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीज़ें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूँ तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नज़र आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में, मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: मतलब वो
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में,
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन।